श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति पारायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति पारायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति पारायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे व्यक्तित्व पर जो कूटनीति की तीक्ष्णता, विचारों की निर्भीकता और राष्ट्रभक्ति की अटल ज्योति का पर्याय थे। वो लंदन की गलियों में भारत की आजादी की मशाल लिए खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की आवाज बनकर वो गूंजे। उनकी बातों में अद्भुत तेज, तर्क और आत्मविश्वास था जो हर चुनौती को चुनौती दे सकता था। भारत की गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले वो महानायक थे वीके कृष्ण मेनन। वो एक राष्ट्रवादी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा सन 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। वीके कृष्ण मेनन का जन्म 3 मई सन 1896 को केरल के मालाबार तट पर स्थित पनियंकरा कालीकट में हुआ था, जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम वेंगलिल कृष्णन कृष्ण मेनन था। उनके पिता का नाम कोमाथु कृष्ण कुरुप था, जो कदाथनाडु के राजा के पुत्र थे। इस तरह वो एक राज परिवार से संबद्ध थे। उनकी माताजी भी त्रावणकोर के पूर्व दीवान रमन मेनन की पौत्री थीं। वीके कृष्ण मेनन के पिता ने वकालत का पेशा अपनाया था। वो एक अत्यंत संपन्न तथा प्रभावशाली वकील थे। इस तरह ये एक राजसी वंश परंपरा से संबद्ध एक अत्यंत समृद्ध और सुसंस्कृत परिवार था। वीके कृष्ण मेनन की आरंभिक शिक्षा थालासेरी में हुई तथा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। बचपन से वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और उनका विद्रोही स्वभाव किशोरावस्था से ही मुखर होने लगा था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। वो डॉक्टर एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सानिध्य में आए। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एनी बेसेंट ने उनकी वाक्पटुता और तीक्ष्ण बुद्धि को पहचाना और उन्हें ब्रदर ऑफ सर्विस समूह से जोड़ लिया। यहीं ब्रिटिश राज के प्रति उनके मन में एक आक्रोश ने जन्म लिया। कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी पोशाक के स्थान पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के प्रति अस्वीकार्यता और भारत माता के प्रति गहरे प्रेम का स्वर बुलंद किया।

रानी बेसेंट वीके कृष्ण मेनन की प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थीं। यही कारण है कि उन्होंने सन 1924 में वीके कृष्ण मेनन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेजने का प्रबंध किया। वीके कृष्ण मेनन सन 1924 में इंग्लैंड पहुंचे और लगभग 27 वर्षों तक वो वहीं रहे। लंदन में उनके प्रवास ने उन्हें एक छात्र से एक वैश्विक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया था। वहां वो हेराल्ड लास्की के प्रिय शिष्य बन गए। लास्की ने उन्हें अपना अब तक का सबसे मेधावी छात्र कहा था। लास्की के विचारों ने वीके कृष्ण मेनन के दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसका प्रभाव आने वाले समय में उनके भीतर स्थायी रूप से रहा। यहाँ उन्होंने MSc और MA के साथ ही कानून की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एक बैरिस्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की। वहां रहते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इंडिया लीग की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग को ही पुनर्गठित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए अभियान चलाना था। ये संगठन भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीयों को एक मंच पर लाता था। इस तरह ये लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया। इंडिया लीग के माध्यम से वीके कृष्ण मेनन ने ब्रिटिश जनता को भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, जैसे लाठीचार्ज, बिना मुकदमा चलाए कारावास और संपत्ति की जब्ती के बारे में जागरूक किया। इस तरह इंडिया लीग ने ब्रिटिश लेबर पार्टी, ट्रेड यूनियनों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज के लिए व्यापक समर्थन जुटाया। सन 1938 में उन्होंने लंदन में एक विशाल राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें अफ्रीका और कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। लंदन में रहते हुए उन्होंने प्रकाशन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एलन लेन के साथ मिलकर पेंगुइन बुक्स और फिर बाद में पेलिकन बुक्स की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकाशन गृह के माध्यम से उन्होंने आम जनता के लिए शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक सामग्री को सस्ते दामों में सुलभ कराया। सन 1934 में लेबर पार्टी के टिकट पर वो सेंट पैनक्रास से बरो काउंसलर नियुक्त हुए। 14 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने पुस्तकालयों के विस्तार और गरीबों के लिए कानूनी सहायता की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए। उनके योगदान के लिए सेंट पैनक्रॉस ने उन्हें फ्रीडम ऑफ द बरो से सम्मानित किया। स्थानीय परिषद द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीके कृष्ण मेनन से पहले ये सम्मान केवल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। सन 1935 में वीके कृष्ण मेनन की भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी और भारत की आजादी के बाद भी ये संबंध अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बना रहा, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण जुगलबंदियों में से एक माना जाता है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को पश्चिम में प्रकाशित और लोकप्रिय करने में भी वीके कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लेबर पार्टी ने भारत की भागीदारी पर अपना रुख बदला, तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। भारत उनकी आत्मा में बसता था और राष्ट्र सेवा को वो सर्वोच्च मानते थे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आजादी के बाद वीके कृष्ण मेनन ब्रिटेन में भारत के पहले उच्चायुक्त नियुक्त हुए और भारत माता की सेवा को वो समर्पित हुए।

कृष्ण मेनन एक स्वतंत्र सोच और अपनी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में जब वो पदस्थ थे, तब वो उच्चायुक्त निवास में न रहकर उच्चायोग के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। सन 1952 में उच्चायुक्त का पद छोड़ने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाला। यहाँ उन्होंने अपनी कूटनीतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता से विश्व को चकित कर दिया। इस समय तक दुनिया उन्हें फॉर्मूला मेनन कहने लगी थी। विश्व समुदाय का मानना था कि किसी भी देश में अगर कोई समस्या है तो मेनन कोई न कोई सार्थक समाधान निकाल सकने में अवश्य सक्षम होंगे। सन 1957 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। पाकिस्तान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने लगभग 8 घंटे तक भाषण दिया, जो आज भी संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा भाषण है। इस तरह उन्होंने कश्मीर मुद्दे की एक सही तस्वीर दुनिया के समक्ष रखी। इसके बाद उन्हें भारत में कश्मीर का नायक कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने केवल भारतीय हितों की ही रक्षा नहीं की, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कोरियाई युद्ध हो, जिनेवा सम्मेलन हो, स्वेज संकट हो या हंगरी संकट, सभी जगह उन्होंने समाधान के सार्थक रास्ते सुझाए। सन 1957 में उत्तरी मुंबई से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वो अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए। उन्होंने DRDO को पुनर्गठित और मजबूत किया ताकि स्वदेशी तकनीक विकसित की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण भी किया। सेना के लिए वाहनों और टैंक के स्वदेशी उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित किया। उन्होंने सैन्य जीवन के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की तथा NCC को पेशेवर रूप दिया। सन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। ये सभी क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। ये वीके कृष्ण मेनन की बड़ी सामरिक और राजनीतिक जीत थी। उन्होंने सेना में पदोन्नति की वरिष्ठता आधारित प्रणाली को बदलकर योग्यता आधारित प्रणाली करने की भी वकालत की थी, जिसका अधिक स्वागत नहीं हुआ था। सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय का सारा दोष वीके कृष्ण मेनन पर मढ़ा गया और उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की पैरवी की। सन 1969 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, संसद पहुंचे और सन 1971 में फिर से जीत दर्ज की। संसद में अंतिम वर्षों के दौरान वो प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, विशेष रूप से 1966 की वियतनाम शांति योजना और 1971 के बांग्लादेश संकट के समय। 6 अक्टूबर सन 1974 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत ने एक ऐसे मौलिक विचारक को खो दिया जिन्होंने भारत को एक दृष्टि दी कि वो स्वयं अपनी नजर से विश्व को देख सके। उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को।

0: गुलजार नार सिंगार तरुण खूब नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूब नटली
1: तले चमक।

0: राधा में कान्हा
1: ना ना ना ना
0: क्या
1: बिजली और बादल
0: तुम दोनों हो पागल
1: है खूब ये जोड़ी
0: बस देर है थोड़ी
1: तुम जीवन साथी
2: हम सब बाराती
1: रंगों की डोली
0: ले आई होली
1: भर लो पिचकारी।

0: मैं भूला रास्ता,
1: रास्ते पे आ जा,
0: मैं थाम लूं भैया,
1: मत छेड़ो सैया,
0: तुम दिल मत तोड़ो,
1: तुम आंचल छोड़ो,
0: तुम काहे रूठी,
1: मेरी चूड़ी टूटी,
0: दिल मेरा टूटा,
1: चल हट जा झूठा,
0: तो नाच में गाऊं,
1: तो बैठ में जाऊं,
0: मुश्किल है जाना,
1: तू है दीवाना,
0: मुझे अंग लगा ले,
1: बस रंग लगा ले,
0: नीला के पीला,
1: नीला ना पीला,
0: क्या लाल गुलाबी,
1: तू बोलो भाई।

शाह गजलों के बेताज बादशाह होते, गजल नवाज तलत महमूद, क्या बात है। अनेक गाणी अनेक चित्रपट करीत करीत ते पोचले जहार नावाच्या शिखरावर। त्यांच्या प्रसिद्धीचं हे अत्युच्च असं शिखर होतं। जहाराची गाणी प्रचंड गाजली, वाह तलत, चाहने वालों की नजर का सुरूर तलत, तलत महमूद, ऐकूया।

राजस्थानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी परियां मुस्कुराए।

अटेंशन प्लीज, दिल के स्टेशन से चढ़कर लव एक्सप्रेस में सफर करने वालों का हम स्वागत करते हैं। याद रहे, लव एक्सप्रेस चल पड़े तो इससे उतरने की कोशिश करना खतरनाक है। तो लव एक्सप्रेस चढ़ने के लिए रेडी है आप।

क्या हुआ क्यों है? हवाएं क्यों झूमती है? लहरें बार बार किनारे को क्यों चूमती है?